0: Very beautifully, Bhagavan Sri Ram continues to explain to Vibhishan. He says,
1: ईश्वर का भजन की उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। और सारथी
0: भगवान कृष्ण
1: अर्जुन
0: दैट कुरुक्षेत्र वॉर
1: भगवान सिंह विभीषण ईश्वर का भजन की उस रथ को भजन Let Kirtan be the Sarathi.

0: महादेव की, श्री रामचंद्र भगवान की, प्रेम से बोलो श्री सत्य सनातन धर्म की
1: जय जय सीताराम। आसन पर बैठिए।

0: are your nightly musical companion, Radio Jaggerty 102.7 FM.
1: ये वो हिट पे पिक्चर आ रही है ना?
2: कौन सी?
1: Bodyguard. उसका टाइटल सॉन्ग एकदम फाड़ू है.
3: अच्छा, हीरो कौन है उसका?
4: तेरी.
3: अरे.

रात और दिन कितने खूबसूरत दो वक्त हैं और कितने खूबसूरत दो लफ्ज। इन दो लफ्जों के बीच में एक वक्फा आता है जिसे शाम का वक्त कहते हैं। यह वो वक्त है जिसे ना रात अपनाती है ना दिन अपने साथ लेकर जाता है। इस छोड़े हुए या छूटे हुए लावारिस वक्त से शायर अक्सर कोई ना कोई लम्हा चुन लेता है और सी लेता है अपने शेरों में। लेकिन कोई कोई शाम भी ऐसी बांझ होती है कि कोई लम्हा देकर

कभी-कभी तो लगता है ये छोटे-छोटे से साथ ही खूबसूरत हैं जिनमें एक दूसरे की तलाश गुम नहीं होती। अभी-अभी एक लम्हा था हथेली पर गिरा और गुम हो गया और वक्त की धूल में उसकी तलाश फिर शुरू हो गई। तलाश ही तो जिंदगी है और जिंदगी सच पूछिए तो इतनी मुख्तसर भी नहीं कि आज बिछड़े और कल मुड़के भी ना देखें।

0: कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें लेकर जन्मे थे, एक घर, एक आंगन, एक चूल्हा, एक झूला, बस इतनी सी जमीन और उसे ढांपने के लिए इतना सा आसमान।
1: रेडियो जागृति 102.7 FM।

आकाश इतना छोटा तो नहीं और इतना थोड़ा भी नहीं, सारी जमीन ढांप लेता है, मेरा इतना सा आंगन क्यों नहीं ढांप लेता। दोपहर होने को आई और एक आरजू धूप से भरे आंगन में छांव की छींटे फेंकती है और कहती है, ये आंगन मेरा नहीं, यहां तो बस पांव रखने को छांव चाहिए मुझे, ये घर भी मेरा नहीं, मुझे उस घर जाना है जिस घर मेरा आसमान रहता है, मेरा आकाश बसता है।

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हे मां सरस्वती, अपनी कृपा का हमें वरदान दो। हे जननी, हम बच्चे हैं, शिशु हैं, अज्ञानी हैं। मां, तुम्हारी स्नेहमयी स्निग्ध दृष्टि से हमारी बुद्धि जागृत करो, जिससे हमारी मेधा प्रतिभा स्मृति तुम्हारे अलौकिक तेज से चमकने लगे। 64 कलाओं की अधिष्ठात्री विद्यादात्री तुम अत्यंत दयालु हो। हे मां शारदे, तुम्हें हर विद्या अभिलाषी का शतशः प्रणाम। मां सरस्वती, तुम हर विद्यार्थी को कदम कदम पर सिद्धि का वरदान देती हो। अत्यंत शांत भाव से अपने उपासकों द्वारा अनेक तत्व और व्याख्याओं की चर्चा कर नए सिद्धांत विश्व में प्रस्थापित करती हो। तुम ज्ञान को बढ़ाती हो, दुनिया की विचारधारा को प्रगति के पथ पर ले जाती हो। हाथ में वीणा और ग्रंथ धारण करने वाली शुभ्र कमल पर आसीन मां सरस्वती, तुम कला और विज्ञान का पवित्र मेल हो। दूध और पानी को अलग करने का सामर्थ्य रखने वाला महान विवेचक श्वेत हंस तुम्हारा वाहन है। तुम्हारा वर्ण कुंदा के फूलों जैसा उज्जवल है और चेहरे पर मृदुस्मित हास्य शोभायमान है। कोटि सूर्यों के विद्या तेज से प्रकाशमान है। ऐसी मां शारदा देवी का कृपा पात्र होने की अभिलाषा से हर साधक प्रतिदिन प्रातःकाल विद्यारंभ से पूर्व प्रार्थना करते हैं। ओम श्रीम ह्रीम सरस्वत्यै नमः। ये सरस्वती मंत्र पारायण करने से वो कल्प वृक्ष जैसा सिद्ध हो जाता है, ऐसा उल्लेख देवी भागवत में है। परम दयालु नारायण जब वाल्मीकि के राम राम के जाप से प्रसन्न हुए, तब नारायण ने गंगा जी के किनारे वाल्मीकि को सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी। उनके उपदेशानुसार वाल्मीकि ने सरस्वती मंत्र को सिद्ध किया और वे वाल्या से वाल्मीकि और वाल्मीकि से महर्षि वाल्मीकि हुए। मां सरस्वती की ऐसी कृपा हुई कि आज हजारों वर्षों बाद भी रामायण की कथा सबसे अधिक सुनी और पढ़ी जाती है। ना मालूम ऐसे कितने विद्या रत्नों से जड़े हुए आभूषणों से मां विभूषित है। कितने सरस्वती उपासक उनकी कृपा से अमरत्व पाए हैं। प्रज्ञावर्धन स्तोत्र में शिवपुत्र कार्तिक स्वामी की स्तुति है, जो स्कंद पुराण से है। इस स्तोत्र का पाठ प्रतिदिन 11 बार करने से विद्यार्थी की बुद्धि बहुत तेज हो जाती है और वो मां शारदा का कृपा पात्र हो जाता है। जगतगुरु आदि शंकराचार्य विरचित शारदा भुजंगाष्टकम के नित्य श्रवण और पठन से हर विद्या अभिलाषी शिशु बालक तरुण और प्रौढ़ को उससे लाभ होगा। उसकी ग्रहण शक्ति स्मरण शक्ति और विवेचन शक्ति बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: बाग में बाहर है
1: क्या?
0: मैंने पूछा बाग में बाहर है?
1: है।
0: गर्मियों से निहार है?
1: हाँ है।
0: तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
1: डन
0: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है?
2: है।
0: गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: Pizza Hut. Feed good times.
1: Rampersad Medical Center Limited, located at 50 Mission Road in Freeport. Contact us at 673-0805 or you can call our hotline 673-2222. Email rampersadmedicalltd@yahoo.com.
2: Rickab Engineering Consultants Limited, number 5 Dean Street, St. Augustine, Trinidad and Tobago. Telephone 662-0793. Email rickabengineering@gmail.com.
3: Kashyap Muni ke ansh aur Aditi ke garbh se janm lene ke karan hi Bhagwan Surya Aditya kehlaye. Inke 12 swaroopon ka varnan milta hai jo kramshah is prakar hai.
4: Tha
3: Mitra se sukh vaibhav dete hain. 11वें से जल में जीवनी शक्ति भरते हैं. 12वें से चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित रहते हैं. किस प्रकार विद्यमान रहते हैं, वरुण रूप होते हैं.

सूर्याय नमः, आदित्याय नमः। श्रोताओं, भगवान सूर्य जिन्हें आदित्य नाम से शास्त्रों में जाना जाता है, वे इस सृष्टि के साक्षात देवता हैं जिनका प्राणी प्रतिदिन दर्शन करता है। आइए भगवान सूर्य नारायण के चरणों में नमन करते हुए उनका गुणगान करें।

0: का धर्म आपका स्टेशन टीवी जागृति।
1: कैसी लग रही?
2: मेरी लग रही है
3: चांदी, सॉरी यार, प्लीज सुन, गलती हो गई यार, प्लीज लोग तो डर यार, प्लीज चांदी सुन, सुन दरवाजा खोल यार।
4: चांदी बहुत रेगुलर है यार वो,
1: इसलिए पसंद है मुझे।

देका श्रीमित विभीषण भारी when these two brothers were fighting for a lengthy period of time, my dear friends. विभीषण हनुमान जी दायु हनुमान गिरिधारी हनुमान सो दैट विभीषण वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड दैट विभीषण वाज गेटिंग टायर्ड ऑफ फाइटिंग रावण एंड व्हेन हनुमान सो दिस माय डियर फ्रेंड्स हनुमान गिरिधारी गिरि मींस अ ह्यूज रॉक हनुमान टेक अ ह्यूज रॉक माय डियर फ्रेंड्स एंड ही लॉन्च्ड द चैरियट ऑफ श्री ऑफ रावण दिस इज द पावर ऑफ हनुमान स्वामी बट इट सेज रावण के रथ धारे और सारथी को मार गिराया और उसके धाती में लात जमाई है दैट वेरी ब्यूटिफुली हनुमान स्वामी रथ तुरंग सारथी निपाता व्हेन हनुमान स्वामी लॉन्चेस ह्यूज रॉक व्हेन हनुमान स्वामी लॉन्चेस ह्यूज रॉक माने संपूर्ण When Hanuman Swami launched this huge rock on Ravan, my dear friends, what happened there? Rath Turang. Turang means to capsize. The chariot or the rath of Ravan turned over. And when it turned over, Sarathi Nipata. Sarathi is the person who was driving the chariot of Ravan. He and all follow. This is how powerful. One rock, huge, giri. Giri means rock. And Hanuman Swami, my friends, when he pushed this rock, he overthrew the chariot, horses, the charioteer. And what happened, my friends? Hridayam mukh kate hi marah silata.